महावर स्वामी सच में आछे सच रह सबको ससमावर कर प्रभुर राम नाम देव में सुर नई है प्राशित जाय नानक तो मुकंत्र पाए जुज में जोर शली चंद्रावल।

फिर ध्यान दे के समझियो, जिनू जीवन पदवी मिल गई, जिनू ये मरतबा मिल गया, जिनू जिनू जिस जिस नू ओनू ओ कौड़ा लगदा ही नहीं है, जिनू जिनू ये मरतब आपा ते पढ़ रहे हैं ना, मेरे वर्गे ने भी बारी पढ़िया होना है, पर मैनू हो जे ओ अवस्था नहीं मिली, पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पर जिनू ओ मिल गया वो कहिंदे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मेरा सज्जन ते मिठ बोलड़ा है, ओदा एक एक बोल मिठा प्यारा लगदा है, वो ते कौड़ा बोलदा ही नहीं है। पहला मैनू कौड़ा लगता सी क्योंकि सच सी ना, मैं पहला झूठ दी जिंदगी जी रहा, मैनू कौड़ा लगता सी सच, पर वो ते है ही बड़ा मिठा, वो ते है ही बड़ा रस नाल भरिया, वो ते मिठ बोलड़ा है। हुण जिहड़ा इस मरतबे नू पा लैंदा है वो ये समझ जांदा है ते वो आखदा है कि कौड़ा किसे ना लगे ही सबना ही भाना, भाना नन्ना चंगा लगना प्यारा लगना, वो सारियां नू जिहड़े मरतबे तक पहुँच जांदे ने जीवन पदवी पा लैंदे आ, वो सारियां नू मिठा प्यारा लगदा है, किसे नू कौड़ा नहीं लगदा।

सगल समगरी तुम रे तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो।

साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जिया का कोटान कोट शुकराना है जी। आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दारे बख्शे। आप जी दे हजूर रात्रि वेले दे गुरमत दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर गुर इतिहास लड़ी वार कथा विचार शब्द कीर्तन छे पौड़ियाँ आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियाँ सेवा संभाल करदियाँ अनेक प्रकार दियाँ भुल्लां गलतियाँ हो जांदियाँ ने। अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ़ करनी अगांह तो समत बख्शनी दारियाई हुई संगत की हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावान दर मंजूर करनिया यात्रावान सफल करनिया जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव छके आप जी का पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी। आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुक्म अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवै।

बचाओ। दाता कृतया प्रतिदिने करे प्रसाद तू जने सब से दिले से जिन्द कवाओ। कार्यासन निर्भचाओ कार्यासन निर्भचाओ।